एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री गायकी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की,
1: श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री राम जन्मभूमि के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के, श्री काशी विश्वनाथ के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू महारानी के, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के, समस्त पूर्वाचार्यों के, सर्वसंत वैष्णव भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, गो माता के, भारत माता के, प्रातः श्री

0: अर्जुनम् भवबीजानाम् अर्जुनम् सुखसम्पदाम् तर्जनय्यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीताराम् राम महाराज की। वसन्तवने परमारथे भेषधरे यमदूत राम नाम की गर्जना भागजायमदूत श्रीसीताराम राम महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम,
1: जय जय श्री राम,
0: जय जय श्री राम,
1: जय जय श्री राम,
0: जय जय श्री राम।

everybody bye-bye.

गोविंद गीता अध्याय 10 विभूति योग। अर्जुन श्री कृष्ण को सृष्टि का सृजक, पालनहार, अजन्मा अविनाशी परम पुरुष स्वीकार करते हुए पूछता है कि हे प्रभु, आप इस दृश्य जगत में कैसे व्याप्त हैं? वह किन किन भावों में आपका चिंतन किया जा सकता है?

श्री भगवान अपने विस्तारों को असीम व अनंत कहते हैं, फिर भी कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि इस जगत में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो मेरा ही प्रतिरूप है, मेरा ही विस्तार है। परंतु हे परंतप, यह सब तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं तो एक अंश के द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त

0: रहा हूँ, पानी बढ़ता जा रहा है।
1: हर वर्ष बार, हर वर्ष तबाही, हर वर्ष विनाश और बर्बादी। हमें इस उछिंकल जल प्रवाह को रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा।
2: उछिंकल जल प्रवाह, उछिंकल जल प्रवाह की कहानी दशकों पहले की है। मैं शताब्दियों से निर्भीक प्रवाहित होता चला आ रहा था, अपनी शक्ति का परिचय देता हुआ, अपने पाषाणी तटों को उत्क्रमित करता हुआ, मानवीय शक्ति को चुनौती देता हुआ।
3: लगता है तुम दामोदर हो।
2: हाँ, मैं दामोदर हूं। नदी नहीं, नद, ब्रह्मपुत्र, शोणभद्र जैसे इन्हीं गिने नदों में एक। पुराणों में मुझे बार बार नद ही कहा गया है।
3: अच्छा है, तुम अपना परिचय स्वयं देने लगे, हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे।
2: परिचय चाहिए तो चलो मेरे उद्गम स्थान को, वहीं से चलो मेरे साथ साथ।

0: हाँ, यहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है। 3000 वर्ष से भी पहले यहां मुझे देखकर कौन समझेगा कि मेरे भीतर कितनी ऊर्जा छिपी हुई है। यह उद्गम स्थान कोई गंगोत्री नहीं है, यमुनोत्री नहीं है, एक पहाड़ी जल स्रोत का उद्गम स्थान है।
1: यह स्थान है बिहार के छोटा नागपुर में, लोहरदगा जिले के पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों के बीच। यहीं से दामोदर की पतली धारा निकलती है। चारों ओर हरे भरे जंगलों से घिरी पहाड़ियां, ऊपर खुला आकाश, सुबह की मुस्कुराती धूप, सांझ की लाल हंसी, पक्षियों का कलरव। यहीं से दामोदर का जल स्रोत फूटता है जो आगे चलकर विशाल नद में बदल जाता है। इसके भौतिक रूप का परिचय तो कोई भूगोल वेत्ता ही दे सकता है। प्रोफेसर डी.पी. सतपथी,
2: दामोदर नदी छोटनागपुर की पहाड़ियों से सिर्फ 610 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। गंगा की तुलना में यह बहुत छोटी नदी है। गंगा 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है, जबकि दामोदर सिर्फ 530 किलोमीटर की। बिहार में 290 किलोमीटर बहने के बाद यह पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है और हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भैरवी, बोकारो, कोनार, गोवाई और बराकर। गर्मी में कहीं कहीं सूखी दिखने वाली यह नदी बरसात में उमड़ पड़ती है।
1: पलामू की पहाड़ियों से उतरकर ये नदी आगे बढ़ती है। अगल बगल साल, शीशम, सेमल आदि के पेड़ों से भरे जंगल गाते रहते हैं। कहीं कहीं किनारे पर बसे गांवों का जीवन पर्व त्योहार मनाता हुआ नाचता गाता रहता है।

0: सुनो, मेरी आवाज सुनो। दामोदर कमर पेट पहाड़ी से उतरकर यहां तक चला आया। किसी ने उसका ओजस्वी स्वर नहीं सुना। सुना लोगों ने मेरे तट पर बसे रामगढ़ में सैनिक छावनी का संगीत, सैनिकों का अभ्यास परेड। वहां प्रसिद्ध सिख रेजिमेंट की छावनी है ना। और उसके बाद आया है ये स्थान। ऊंचाई से सहसा नीचे उतरती मेरे जल प्रवाह को सुना जा सकता है। इसमें केवल मेरा नहीं, भैरवी का भी स्वर है।
1: हाँ, ये दामोदर और भैरवी का संगम है, प्रसिद्ध तीर्थ राज तपा, जिसे अब लोग रजरप्पा कहते हैं। प्रकृति की सुंदर लीला भूमि है ये। यही एक प्राचीन शिला भूमि के ऊपर स्थित है माँ छिन्नमस्ता का पावन मंदिर। इसके महात्म्य के संबंध में पंडित बालेश्वर नाथ पाठक बतलाते हैं।
2: यही मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को देवी महात्म्य बतलाया था और उन्हें देवी की आराधना करने का परामर्श दिया था। यह प्रसंग मार्कंडेय पुराण में आया है। यही राजा सुरथ ने कठिन तपस्या से देवी को प्रसन्न किया था, इसी से इसका नाम पड़ा राजतपा। आज भी माँ छिन्नमस्ता के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
1: मानव विज्ञान के प्रोफेसर रमाकांत प्रसाद कहते हैं,
3: दामोदर नदी का मंदिर में सबसे मुख्य मंदिर है रजरप्पा, जो कि सबसे आराध्य देवी मानी जाती हैं, चाहे वो जनजाति हो इस क्षेत्र का, गैर जनजाति हो, पिछड़ी जाति हो या और कोई भी हो। इसलिए और यहाँ लोग जितने हैं वे शादी ब्याह मुंडन या जीवन संस्कार के जो भी हैं उत्सव, सब का केंद्र उसी को मानते हैं।
0: मैंने इस मंदिर को बनते देखा है, इसे ही नहीं अपने तट के सभी निर्माणों को देखा है। मुझे याद है अभी कुछ दशक पहले तक मेरी विनाश लीला से लोगों में हाहाकार मचा रहता था।
1: बाढ़ आती थी, तबाही होती थी।
4: दामोदर अभिशाप की नदी के रूप में प्रसिद्ध रही है। ग्रस्त नदी ने 3000 वर्ष पहले अपने तट पर एक गौरवशाली सभ्यता और संस्कृति को जन्म दिया था, वही अभिशाप में बदल गई है। गत 700 वर्षों में बार बार इसमें बाढ़ आई, 20 तो बहुत भयानक रही। सन 1943 की बाढ़ ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, हजारों गांव बह गए, महानगर कलकत्ता के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया था। तब शासन ने दामोदर की चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया, बांधों की योजना बनी। 7 जुलाई 1948 को भारत की संविधान सभा ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन बिल पास किया और काम शुरू हुआ।
1: उस समय पंडित नेहरू ने कहा था, दामोदर घाटी योजना स्वाधीन भारत में प्रारंभ की गई महत्व विकास योजनाओं में एक है। इसने नए भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व किया है। ऐसी बड़ी योजना जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी को कार्यान्वित होते देखकर प्रसन्नता का अनुभव होता है। कार्य प्रारंभ हुए दामोदर को बांधने के। केवल दामोदर नहीं, उसकी प्रमुख सहायक नदियों को भी, क्योंकि दामोदर की विनाशकारी शक्ति केवल उसकी शक्ति नहीं उसकी सहायक नदियों की भी थी। एक के बाद एक बांध बनने लगा। 21 फरवरी 1953 को प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बराकर पर तुलैया बांध का उद्घाटन किया।
0: उन्नीस सौ पचपन में दामोदर पर दुर्गापुर बांध का,
1: 1957 में बराकर पर मैथुन बांध का और दो ही वर्ष बाद दामोदर पर संकेत बांध का।

0: स्वाधीन भारत के नव जागृत लोगों ने मुझे बांध दिया, दाम शक्ति संपन्न दामोदर को बांध दिया। नए भारत ने मेरी शक्ति पहचानी, उसने शताब्दियों से आते हुए अभिशाप को वरदान में बदल दिया। अब मेरी शक्ति उसकी शक्ति बन गई है, मेरी ऊर्जा उसकी ऊर्जा बन गई है।
1: स्वाधीनता प्राप्ति के बाद नए भारत के नए तीर्थ बनने लगे दामोदर के तट पर। हर बांध एक तीर्थ, हर उत्पादन केंद्र एक नया मंदिर, अनेक नए नए औद्योगिक संस्थान खड़े हो गए इसके किनारे।

मेरी प्रथम पर पहले जंगल का संगीत सुनाई पड़ता था, पक्षियों का कलरव गूंजता था, लोक जीवन के गीत ध्वनित प्रतिध्वनित होते थे। अब मशीनों का घर घर लौह संगीत सुनाई पड़ता है।

ये बोकारो जिले में तोनू गांव के निकट तोनू घाट बांध है दामोदर नदी पर, बोकारो थर्मल पावर प्लांट के दक्षिण पश्चिम में। सन 1965 में इसकी नींव पड़ी थी। जलापूर्ति 1972 से शुरू हुई। बोकारो स्टील प्लांट और दूसरे उद्योगों को तो इससे जलापूर्ति की ही जाती है। बंगाल के कई भागों तक इसका पानी पहुंचता है।

0: जरूर देखो, वहां छोटे छोटे हरे भरे वृक्ष और झाड़ियों से घिरी पहाड़ियों की बगल में कोई फैक्ट्री है। चिमनी से निकलता धुआं काला नहीं, नीला नहीं, बिल्कुल पीला, जिसमें कभी कभी लालिमा छिटक पड़ती है। नीला आकाश और उसमें तिरते बादल के टुकड़े उस पीले धुएं में रंग जाते हैं।
1: ये गोलिया का बारूद कारखाना है। इसके प्रशासनिक सेवा प्रबंधक अरुण कुमार वर्मा के शब्दों में,
2: भारत में पहला और सबसे बड़ा व्यावसायिक बारूद का कारखाना छोटा नागपुर के कोनार और दामोदर नदियों के बीच स्थित है। इस कारखाने का उद्घाटन 1958 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। राष्ट्र के निर्माण में सतत सहयोग देता आया है।
1: उधर एक और नया मंदिर है, दामोदर की सहायक नदी बोकारो पर निर्मित बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, और वहीं थोड़ा आगे बढ़कर दामोदर पर बना चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। बोकारो का स्टेशन जब छठी दशक में बना था तब देश का सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र था, और यही है बोकारो का लौह उत्पादक औद्योगिक संस्थान BSL, जिसकी परियोजना अधिशासी निदेशक यज्ञ प्रकाश शर्मा ने बताया।
3: बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना एक कंपनी के रूप में 29 जनवरी सन 1964 को हुई थी। इस स्टील प्लांट की जो कल्पना की गई वो ही इन मुद्दों को देख करके की गई कि इस स्थान में हमको पास में ही अयस्क है, कोयला है और पानी है।
1: दामोदर पर आधारित स्टील प्लांट सिर्फ बोकारो में नहीं है, अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक डॉक्टर सुरेश झा अजीत के शब्दों में,
4: दामोदर नदी पर आधारित है भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तीन प्रमुख इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, बर्नपुर एवं बोकारो। बर्नपुर, दुर्गापुर एवं बोकारो के इस्पात कारखानों का देश की प्रगति में बहुमूल्य योगदान रहा है। इन कारखानों ने इस क्षेत्र की काया ही पलट दी है।
1: ये सिंदरी का खाद कारखाना है, स्वाधीन भारत में पब्लिक सेक्टर का पहला खाद कारखाना। मशीनें चल रही हैं, भट्टी के चिमनी से आग की लाल लाल लपटें निकल रही हैं, धुएं के बादलों से एक ओर का पूरा आकाश ढक गया है। इस कारखाने के बारे में भारतीय खाद निगम सिंदरी के विद्युत एवं जल सेवा अधीक्षक दीप नारायण प्रसाद,
5: फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी यूनिट की स्थापना 1951 में, कमिश्निंग 1951 में हुई। उस समय इसकी स्थापना दामोदर नदी के किनारे इसलिए की गई कि पानी की आवश्यकता काफी पर्याप्त मात्रा में इस कंपनी को है।
0: मैंने इस क्षेत्र के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खुले हाथों से अपना वरदान लुटाया है। मैंने लोगों को जल की सुविधा दी, विद्युत उत्पादन केंद्र बने, कल कारखाने खुले, और ये सब संभव हो सका मेरी कोयला खाने से।
1: देश में उपलब्ध इस काले सोने की संपदा का आधा हिस्सा दामोदर की तटवर्ती खाने से ही निकाला जाता है। CCL के BNK क्षेत्र के डिप्टी चीफ सर्वे ऑफिसर एम पाथ्रो का कहना है,
6: बिहार से बंगाल तक जितना कुल कोयला है यही दामोदर का चलते ही हुआ है, और ये दामोदर के ही है, दान है। BNK क्षेत्र में यहाँ दामोदर का नीचे बहुत से कोयला है, जिसके लिए हम लोग दामोदर रिवर को दूसरे तरह से डाइवर्ट करने का प्रोग्राम बनाया है।
1: सचमुच सार्थक नाम है दामोदर का, कभी सांस्कृतिक दृष्टि से ये सार्थक रहा होगा, आज भौतिक संपदा की दृष्टि से सार्थक है। इस

0: उदर में विशाल भौतिक संपदा छिपी हुई है।
1: मैंने लोगों को अपनी संपदा दी है, उनके जीवन को विभिन्न रूपों में समृद्ध बनाया है।
0: दामोदर के जीवनदायी महत्व को उसके तटवर्ती उद्योगों, संस्थानों और बस्तियों के लोग सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। भारत कोकिंग कोल के चांच विक्टोरिया क्षेत्र के प्रधान प्रबंधक आरसी पांडे कहते हैं,
2: दामोदर नदी हम लोगों के लिए एक बड़ी देन है इस एरिया के लिए। उसके नहीं होने से हम लोग कुलेरी वालों को जल के लिए तथा बालू के लिए तकलीफ होती है। ये विदित है कि कुछ क्षेत्रों में हम लोग कोयला निकालकर बालू भर देते हैं ताकि ऊपरी सतह या विलेज या शहर डैमेज ना हो, और इसके लिए हम लोगों को बालू इस दामोदर नदी और बराकर नदी से मिलता है।
1: कितना अंतर आ गया है मेरे जीवन और परिवेश में। आज जहां खाने हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, नए बसे शहर हैं, वहां कभी जंगल थे, सिर्फ जंगल।
0: द इंडियन नेशनल आर्ट एंड कल्चर से संबद्ध बुलु इमाम कहते हैं,
3: हमारे दामोदर नदी भी ऐसे ही एक पूरा जंगल का इलाका था। कमरपेट पहाड़ जहां से वो उठती है, वहां से लेकर के रानीगंज कोलफील्ड तक ये जंगल ही जंगल था।
0: बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के स्थान से विस्थापित सोहन गोप,
4: अभी तो हम यहाँ के जो है खास करके जो है बासी हैं, और यहाँ के मेरा जो है बाप दादे ने जो है इस मकान को यहाँ पे रखा, खेत जमीन भी सब बनाया इस जगह पर। हम लोग को पूरा जो है जीवन इसी में हम लोग व्यवत करता था। खेत बाड़ी था चारों तरफ से, इसमें जो है सब उपजाऊ जमीन था, जंगल भी काफी था।
1: मेरे तट पर अनेक बड़े बड़े औद्योगिक नगर बस गए हैं, पर आज भी किनारे पर बसे गाँव के लोग अपना सहज जीवन जीते जा रहे हैं, नाचते हुए, गाते हुए, पर्व त्योहार मनाते हुए।
0: तटवर्ती गाँव के लोग नाचते गाते जी रहे हैं, पर जमाने का दर्द उनके गीतों में भी उतर आया है।
5: ना वो दो नदी बस्ती होड़ का ना लेखा पोड़ा
0: हम लोग पशु की तरह मेहनत करते हैं, तब कुछ पैसा मिलता है। हम आदिवासी बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं। हम लोग माटी काट कर बच्चों का पालन करते हैं।
1: उनसे भी अधिक गहरा दर्द उनका है जो अपनी जमीन से विस्थापित हो गए हैं।
0: मैथन बांध के निकट गोगना गांव का रहने वाला मैनेजर टिडू कहता है,
2: पहले खेती बाड़ी करते थे, जमीन जगह भी था, बांध पुखुर भी था, और ऐसे फालतू का दिन में मछली उछली भी हम लोग पकड़ते थे। अभी तो मछली मिलने से भी उतना हम लोग नहीं करते हैं, और ऐसे करता है तो लेकिन डीबीसी को पकड़ लेता है, आप लोग काहे मछली पकड़ते हैं।
0: जो विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, की जा रही है, पर है तो वे अपनी धरती से विस्थापित ही।
1: हाँ, दामोदर की संतानें विस्थापित हुई है, मुझे उनसे सहानुभूति है। पुरानी व्यवस्था बदलती है तो कष्ट तो होता ही है, पर नई व्यवस्था बनने के अपने लाभ भी है।
0: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर अजीत,
6: छोटे छोटे गांवों के समूह के स्थान पर आधुनिक सुविधा संपन्न नगर विकसित किए गए हैं। इन संयंत्रों ने जहां स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर दिए हैं, वहाँ लघु उद्योगों की स्थापना में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। अनजाने गांव व कस्बे आज भारत के मानचित्र पर गौरवमय स्थान अर्जित कर चुके हैं।
0: खाने में, नए औद्योगिक संस्थानों में, नए बसे नगरों में लोगों को नई नई सुविधाएं मिली हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किनारे की क्षेत्रीय संस्कृति अखिल भारतीय संस्कृति में बदल गई है। बोकारो के सांस्कृतिक जीवन से जुड़े अमलेंद्र चैटर्जी कहते हैं,
7: यह हम लोगों को एक गर्व है कि आस्ते आस्ते स्टील प्लांट बढ़ते हुए हम लोगों का संस्कृति भी बढ़ते गया है। यहाँ बोकारो स्टील प्लांट में हमारा भारतवर्ष का हर एक प्रोविंस का, ऑलमोस्ट ऑल प्रोविंस का कुछ ना कुछ

0: एम्प्लॉयड हुए हैं, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हर एक जाति, हर एक भाषाओं का संस्था डेवलप करने लगा, जैसा आपको भोजपुरी समाज फॉर लोकल भोजपुरी पीपल, देन उत्कल पठागर था फॉर ओडियाज, मिलवर्तन संस्था था फॉर पंजाबी पीपल, देन मलयाली समाजम था फॉर केरलाइट्स, देन आंध्रा एसोसिएशन फॉर आंध्राइट्स, तमिल मंद्रम फॉर तमिल पीपल, कनाडा संघ था फॉर कर्नाटक पीपल।
1: इसी प्रकार विभिन्न धर्म वाले के लिए धर्म स्थानों की व्यवस्था हुई है। राम मंदिर, शिव मंदिर, कालीबाड़ी, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, बौद्ध विहार आदि। ये सिर्फ बोकारो और सिंदरी की बात नहीं, सभी नए बने औद्योगिक नगरों में भी यही बात है। दामोदर भारतीय संस्कृति का नद है, सर्वधर्म समन्वय का नद है।
2: माँ कल्याणेश्वरी के मंदिर से आरती की आवाज आ रही है, मैथन से, माई के स्थान यानी माई स्थान से। शताब्दियों पहले माता कल्याणेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मैंने इसे बनते देखा है। सिद्ध पीठ है यह, एक तरह से बराकर के तट पर स्थित है यह मंदिर। बहन बराकर वहां से आगे बढ़कर मुझसे यहाँ सेंगोरिया में मिलती है और इसके बाद हमारी यात्रा साथ साथ चलती है।

0: ये बंद भूमि है जिसे कभी दामोदर के जल प्रवाह ने बार बार तबाह किया था। 1955 में दामोदर तक दुर्गापुर बांध का उद्घाटन हुआ और फिर अनेक नहरें निकाली गईं, तो इस इलाके का नक्शा ही बदल गया। बाढ़ का आना तो रुका ही, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी और पूरा क्षेत्र अत्यंत उर्वर बन गया।
1: दुर्गापुर उत्पाद संयंत्र बना तो इस क्षेत्र का रूप ही बदल गया। काल के घने जंगल, छोटे छोटे गांवों और खेतों से घिरे दुर्गापुर को लोग जंगल महल के नाम से जानते थे। कारखाना खुला तो देखते देखते सारा ग्रामीण परिवेश एक आधुनिक विस्तृत औद्योगिक नगरी में बदल गया। मैं इसका साक्षी हूँ।
0: इतना औद्योगिक विकास शायद ही किसी अन्य नदी के तट पर हुआ है। दामोदर के किनारे विकसित उद्योगों ने उसके लिए ही नहीं, उसके तटवर्ती समग्र जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। इसके किनारे 15 कोल वॉशरीज हैं, 6 पावर प्लांट हैं, 4 उर्वरक और रासायनिक संयंत्र हैं, 1 सीमेंट फैक्ट्री है, स्टील प्लांट भी है, बारूद कारखाना भी है। इन सबके बहिर्स्राव, राख, कोयला चूर्ण, तेल के धोवन आदि से दामोदर का जल प्रदूषित हो रहा है, उसका जल विषाक्त बन रहा है।
1: इसी से कहता हूँ, मुझे विष की धारा में मत बदलो। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम मुझे जीवन दो। मैं तो समय का यात्री हूँ, समय के साथ चलता आया हूँ। बंगाल की सच्ची श्यामला धरती पर मैं हुगली नदी में मिलता हूँ और उसी के साथ जाकर सागर में समाहित हो जाता हूँ, स्वयं सागर बन जाता हूँ।
0: बहता जा रहा है दामोदर, ये बांधों का नद है, निर्माणों का नद है, खनिज संपदा का नद है, सुख समृद्ध का नद है, अभिशाप से वरदान में रूपायित हो जाने वाला नद है। ये कृषि संस्कृति और औद्योगिक सभ्यता के समन्वय का नद है, सौंदर्य और पौरुष का नद है, भक्ति और शक्ति का नद है। शताब्दियों से बहता चला आया है, बहता चला जा रहा है दामोदर।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि भगवान शिव शंकर तथा दैत्यराज शंखचूड़ के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। श्री विष्णु द्वारा दिए गए उग्र कवच तथा उस कवच में समाये तुलसी के शील के कारण शंखचूड़ पराजित नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की सहायता से छल द्वारा वो कवच प्राप्त कर लिया। शंखचूड़ की मृत्यु हो गई, परंतु उस भक्त को देवाधिदेव के आशीर्वाद से पुनः श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ। वो सुदामा बनकर गोलोक में चला गया। भगवान शंकर ने तुलसी को भी नया दैवी शरीर दिया तथा उन्हें पूर्ण जगत में पूजनीय बना दिया। प्रस्तुत है इससे आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: शौनक जी, आज मैं आपको शिवपुत्र अंधकासुर की कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा में ये शिक्षा है कि पापी पुत्र का अंत करने में एक पिता को लेश मात्र भी झिझकना हुई।
2: तो सुनाइए ना ये कथा द्विज श्रेष्ठ।
1: शौनक जी, एक समय की बात है, देवाधिदेव के मन में विचार आया कि पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। वे देवी पार्वती सहित सभी शिव गणों को लेकर काशीपुर में जा बसे। परंतु
2: क्या मुनिवर सूत जी?
1: काशीपुर था तो रमणीक स्थान, परंतु कैलाशवासी शिव को पर्वतों की शीतलता का ही आभास था। उन दिनों काशीपुर का वातावरण ग्रीष्मकालीन था।
3: ओ स्वामी, इस प्रदेश की उष्णता से आपका बाल पसीने से भीग उठा है। लाइए, मैं अपने हाथों से इसे पोंछ देती हूँ। अरे, ये क्या? ये समस्त जगत में अंधकार क्यों छा गया?
4: आपने पसीना पोंछते हुए अपने हस्त से हमारे नेत्र जो ढक लिए हैं।
3: मेरा ये हस्त आपके नेत्रों से हट क्यों नहीं रहा? आपका पसीना धरती को भिगो रहा है। ये क्या? ये धरती से कैसा विकराल, क्रोधी, नेत्रहीन तथा कुरूप जीव उत्पन्न हुआ है।
4: अब हमारे नेत्रों पर से अपना हाथ हटाइए देवी।
3: जगत फिर प्रकाशमान हो उठा। ये अद्भुत जीव मनुष्य से भिन्न कौन है? हमें इससे भय लग रहा है।
4: पार्वती, आप अपने पुत्र से क्यों भयभीत होती हैं?
3: पुत्र? हमारा पुत्र?
4: हाँ देवी, ये हमारे ही पसीने से उत्पन्न हुआ है, अतः ये हमारा पुत्र हुआ। इसकी उत्पत्ति के समय आपने हमारे नेत्र मूंद लिए थे, अतः ये नेत्रहीन है। हम इसका नाम अंधक रखते हैं। इसका उत्तम लालन पालन अब आपका उत्तरदायित्व है। पुत्र गणेश तथा पुत्र कार्तिकेय के समान आप अंधक की भी माता हैं।
3: स्वामी की आज्ञा का पालन होगा।
5: हे सर्वेश्वर, मैं हिरण्याक्ष वर्षों से आपके दर्शन पाने के लिए तप कर रहा हूँ। मुझ अकिंचन पर दया

0: हे दैत्यनाथ हिरण्याक्ष, बोल क्या इच्छा है तेरी।
1: हे महादेव, मेरे ज्येष्ठ भ्राता हिरण्यकशिपु अनेक संतानों का सुख भोग रहे हैं, परंतु चंद्रभाल मेरी वंश परंपरा को आगे ले जाने वाला मेरा कोई

0: तुम्हारे इस कठोर तप से प्रसन्न होकर अपना नवजात पुत्र अंधक तुझे देता हूँ।
1: स्वामी,
0: वो तेरी ही भांति पराक्रमी और अजय होगा।
1: प्रभु, मैं धन्य हुआ महाप्रभु, मैं धन्य हुआ।
0: परंतु हिरण्याक्ष, स्मरण रहे, अंधक को कभी ज्ञात न होने पाए कि हम इसके पिता हैं, अन्यथा ये हमारे पास लौट आने को आतुर हो सकता है। हम भी ये तथ्य किसी पर विदित नहीं होने देंगे।
1: आपकी आज्ञा का पालन होगा महाप्रभु, पालन होगा प्रभु।
2: पुत्र प्राप्ति के अहंकार में हिरण्याक्ष की आसुरी प्रवृत्तियां उभर आई। वो देवताओं पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी को ही अपने देश रसातल में उठाकर ले गया।
3: फिर पृथ्वी का उद्धार कैसे हुआ सूत जी?
2: भगवान विष्णु ने भयंकर वाराह रूप धारण किया, अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को मुक्त कर उसे यथास्थान रख दिया तथा अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का वध कर डाला।
3: महाभाग, फिर उसके पुत्र अंधक का क्या हुआ?
2: उसके पिताहीन हो जाने के कारण उसके संबंधी अंधक को प्रताड़ित करने लगे।
4: अरे नेत्रहीन मूर्ख, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे राज्य से क्या लेना देना?
5: हिरण्याक्ष तो और भी मूर्ख था। घोर तप के पश्चात उसने पुत्र पाया भी तो तेरे जैसा असहाय, नेत्रहीन, कुरूप, बेडौल।
4: और फिर तुम हिरण्याक्ष की उत्पत्ति तो नहीं हो, किसी और की उत्पत्ति हो। इस राज्य के भागी नहीं हो सकते तुम।
5: हम हिरण्यकशिपु पुत्र ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। मैं कहता हूँ जाओ, अरे जाओ, निकल जाओ हमारे प्रदेश से, जाओ।
4: जाओ।
5: अरे जा जा।
1: यदि मैं हिरण्याक्ष पुत्र नहीं हूँ तो किसकी उत्पत्ति हूँ मैं? कौन है मेरे वास्तविक माता पिता? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं?
6: पुत्र अंधक।
1: अरे ये तो पिताजी की वाणी है।
6: पुत्र, तू उन सबसे बलशाली है। ब्रह्मा की तपस्या करके अपने इस बल को और सुदृढ़ बना। उनसे वर प्राप्त करके मात्र शिव ही तेरी मृत्यु का कारण बने। ये तेरे मृत पिता की आत्मा की आज्ञा है पुत्र।
1: मैं अवश्य आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे आशीर्वाद दें।
7: हे परम पिता ब्रह्मदेव प्रसीद भव, हे परम पिता ब्रह्मदेव प्रसीद भव, हे परम पिता ब्रह्मदेव प्रसीद भव।
8: हे दैत्येंद्र, तुम कौन हो? किस अभीष्ट से हमारी आराधना कर रहे हो?
1: आपके आगमन से हिरण्याक्ष पुत्र अंधक धन्य हुआ।
8: अपना अभीष्ट बताओ अंधक।
1: हे विधाता, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है वे सभी दैत्य भ्राता मेरे अधीन हो जाएं। मेरा ये अंधकार में जीवन प्रकाशमान हो जाए, मुझे दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए।
8: तथास्तु अंधक।
1: चक्षु मिलते ही आपको सशरीर देख मेरा जीवन सफल हुआ परमपिता।
8: अपने हृदय की और इच्छाएं भी व्यक्त करो अंधक।
1: इंद्र मुझे कर दिया करें, देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, स्वयं आप श्री नारायण तथा सर्वेश्वर शंकर भी मेरा वध न कर सके।
8: ये वरदान देना असंभव है दैत्य श्रेष्ठ अंधक। तुम्हें अपने विनाशक को तो निर्धारित करना ही होगा।
1: विनाशक? पिताजी की वाणी ने मुझसे कहा था कि मात्र शिव ही मेरी मृत्यु का कारण बने।

0: ब्रह्मदेव, फिर मात्र शिवजी ही अपने शूल से मुझे मृत्यु प्रदान कर सके।
1: तथास्तु अंधक, मैं बिन मांगे तुम्हें एक वर देता हूं। मैं अपने स्पर्श से तुम्हें एक सुडौल सुंदर एवं तेजस्वी शरीर प्रदान करता हूं।

0: हाँ, ये क्या? परम पिता अपने स्पर्श मात्र से मुझे ये पौरुषमय देह देकर लुप्त हो गए। चलो अपने भ्राताओं के राज्य पर अधिकार करूं।
1: ब्रह्मा, आज आप मृत्यु के उपरांत भी हिरणाक्ष के बुने जाल में फंस ही गए। अंधक को शिव के हाथों मृत्यु का वरदान दे दिया। क्या एक पिता अपने ही पुत्र का वध कर सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। पुत्र अंधक, तू अमर हो गया।

0: नारायण नारायण। परमपिता को पुत्र नारद की चरण वंदना।
1: कहो मुने नारद, इस बार मर्त्यलोक से क्या समाचार लाए हो?
0: परमपिता, इस बार तो सब कुछ विचित्र ही घटित हो रहा है।
1: वो क्या देवर्षि?
0: आपके वरदान से अंधक दैत्यराज बन बैठा है। उसने तीनों लोक जीत तो लिए हैं, परंतु वहां अपना अधिकार नहीं किया है। वो इंद्रादि देवताओं से मात्र कर प्राप्त करता है।
1: तो इसमें विचित्र क्या है नारद?
0: नारायण नारायण, ये तो दैत्य प्रवृत्ति के विपरीत है विधात।
1: फिर तो अंधक की प्रजा बहुत सुखी होगी मुनि नारद।
0: नारायण नारायण, नहीं ब्रह्मदेव, अंधक की प्रजा उससे अत्यधिक आतंकित है।
1: वो क्यों पुत्र नारद?
0: अंधक और उसके तीन मंत्री दुर्योधन, वैधस तथा हस्ती अत्याधिक व्यभिचारी हैं। स्त्री की मर्यादा का मान नहीं करते। जब जिसे चाहते हैं विहार के लिए उठा ले जाते हैं। ये कामांध ना आयु देखते हैं ना रूप वर्ण।
1: अर्थात सृष्टि में नारी जाति असुरक्षित हो गई है।
0: नारी जाति की सुरक्षा के लिए अंधक का नाश आवश्यक हो गया है महाप्रभु।
1: इस बार हम विवश हैं पुत्र नारद।
0: नारायण नारायण, विवश? और आप?
1: हाँ नारद, महाप्रभु क्षीण पड़े अपने पाशुपत व्रत को संपूर्ण करने के उद्देश्य से 1000 वर्ष की तपस्या में लीन हैं। वे कहाँ हैं किसी को ज्ञात नहीं। स्वयं देवी पार्वती अपनी सखियों जया तथा विजया के साथ एक पर्वत की कंदरा में रह रही हैं।
0: नारायण नारायण, ऐसे काल में महाप्रभु ने ये क्या किया? देवी पार्वती को असुरक्षित छोड़ दिया।
1: परंतु वीरभद्र तथा नंदिकेश्वर कंदरा के द्वार की रक्षा करते हैं।
0: परम पिता, ये उचित नहीं हुआ, नहीं हुआ। कहीं अंधक की दृष्टि।
2: अरे रे, ठहर ठहर तो सही। ओहो, ये धूप मैं तेरे लिए ही तो लाई हूँ। यूं कुलाचे भरता रहेगा तो भूखा रह जाएगा। ली जया, तू इसे दौड़ाती फिर रही है और देख देख, ये मेमना तो गिरकर आहत हो गया है।
3: अरे मैं इसे कहाँ दौड़ा रही थी विजया, मैं तो घास खिलाने के लिए इसके पीछे पीछे हूँ।
2: अरे रे रे, देख देख, कहाँ बात हुई है आप।
3: अरे ला

0: जरा मैं भी देखूं।
1: वेदस, हाँ हाँ, इस निर्जन वन में ये सुंदरियां कैसे? अरे दुर्योधन, अवश्य ही यहाँ कोई ऋषि आश्रम है। देख देख वेदस, वो उस कंदरा में, उस कंदरा में तो एक अप्सरा सी बैठी प्रतीत हो रही है। कैसी कैसी अनिध्य रूप की स्वामिनी, परंतु कंदरा के द्वार पर ये वानर रक्षक कौन है?
2: एक एक वृषभ भी बैठा है।
1: इन्हीं सुंदरियों से पूछते हैं। सुंदरियों? अरे अप्सरा रूपी सुंदरियों, इस निर्जन वन में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी आयु सन्यास की नहीं है, उपभोग की है।
0: विजया, मुझे तो इन पुरुषों की नीयत पर संदेह हो रहा है। हाँ, देखो कैसे ललचाई दृष्टि से हमें देख रहे हैं। और इनकी भाषा भी कैसी अभद्र है ना। चलो चलकर देवी को बताते हैं। चलो। हाँ, हाँ, चलो देवी, देवी पार्वती।
3: क्या बात है जया, इतनी भयभीत क्यों हो?
0: देवी, कंदरा के बाहर दो विकराल पुरुष खड़े हैं, जो बहुत अभद्र अश्लील व्यवहार कर रहे हैं।
3: वीरभद्र, नंदिकेश्वर।
4: आज्ञा माते।
3: जाइए, देखिए कौन है, आवश्यकता पड़े तो बलपूर्वक उन्हें वहां से हटाइए। स्मरण रहे, उन्हें ज्ञात ना हो कि हम कौन हैं। वो स्वामी की अनुपस्थिति का लाभ उठा सकते हैं।
4: जो आज्ञा देवी।
5: हम आपको आदेश दे चुके हैं मंत्रीवर दुर्योधन, वेधस और हस्ती, ऋषि पत्नियों तथा ऋषि पुत्रियों को आप स्पर्श भी नहीं करेंगे।
4: वहां हमें कोई ऋषि दृष्टिगोचर नहीं हुआ, मात्र वो वानर तथा वृषभ था।
1: दुर्योधन ठीक कह रहे हैं दैत्यराज, ये अवश्य ही कोई दैवी लीला है।
4: दैत्यराज, आप स्वयं चलकर इस शंका का निवारण क्यों नहीं कर लेते कि कंदरा निवासी वे स्त्रियां कौन हैं?
5: दुर्योधन, दैत्य सेना को प्रस्थान का आदेश दो। यदि आपकी शंका सही है, वो दैवी लीला है और वे वानर तथा वृषभ इतने शक्तिशाली हैं, तो हमें सेना की आवश्यकता पड़ेगी।
4: जो आज्ञा।
0: देवी, देवी, देवी, देवी अनिष्ट हुआ चाहता है।
3: क्या हुआ जया?
0: हे देवी, पहाड़ी दैत्य सेना हमारे पर्वत की ओर आ रही है।
3: ये तो वास्तव में अशुभ समाचार है। देवाधिदेव की तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। हे ब्रह्मदेव, हे विष्णु हरे।
6: आदेश देवी पार्वती।
3: आप तथा समस्त देवतागण देवियों की सेना का रूप धरकर कंदरा के द्वार पर स्थित हों तथा उन दैत्यों से युद्ध करें।
6: ऐसा ही होगा देवी।
2: अरे ये क्या, इतनी व्यापक स्त्री सेना यहाँ कैसे आ गई वेधस?
1: अरे हमने कहा था ना दुर्योधन, ये अवश्य ही कोई दैवी लीला है। दैत्यराज, सेना को आक्रमण का आदेश दें।
7: आक्रमण!
1: ना,

0: नारायण नारायण देवाधिदेव, आपकी तपस्या अति उपयुक्त समय पर पूर्ण हुई है।
1: ये सब क्या हो रहा है नारद मुनि? ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा समस्त देवतागण देवियों के रूप में किससे युद्ध कर रहे हैं?
0: महाप्रभो, आपकी अनुपस्थिति में एक अति कामांत दैत्य राज का उदय हुआ है। उसकी काम वासना इतनी उग्र है कि सृष्टि की कोई भी नारी उससे सुरक्षित नहीं है।
1: काम वासना के वश में आकर असहाय नारी का भोग करने से अधिक जघन्य अपराध एवं पाप हो ही नहीं सकता। हम अपने शूल से अभी इस दुष्ट दैत्य का नाश किए देते हैं।
2: ठहरिए प्रभु शिव शंकर, ये आप क्या अनिष्ट करने जा रहे हैं?
1: ये किसकी वाणी है? प्रत्यक्ष आओ।
2: प्रभु, मैं प्रत्यक्ष नहीं आ सकता देवाधिदेव, मैं देह त्याग कर चुका हूं।
1: हम तुम्हें कुछ समय के लिए पुनः अपने रूप में आने की शक्ति देते हैं।
3: मेरी चरण वंदना स्वीकार करें दया निधान।
1: हिरण्याक्ष, तुम?
3: देवाधिदेव,
1: तुम हमें किस अनिष्ट से सूचित करवाने की चेष्टा कर रहे हो?
3: महादेव, आपके इस विनाशक शूल का लक्ष्य आपके द्वारा मुझे प्रदान किया गया शिव पुत्र अंधक ही है।
4: क्या?
3: क्या मैं अंधक
4: शिव पुत्र हूं? क्या शिव पुत्र?
3: अंधक और शिव पुत्र?
4: एक दानव और परमेश्वर का पुत्र?
1: हिरण्याक्ष, ये अवश्य तुम्हारी कोई माया है। हमारा पुत्र अंधक, नेत्रहीन, कुरूप और बेडौल था।
5: क्षमा करें प्रभो, अंधक को यह स्वरूप मैंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रदान किया था। मुझे ज्ञात नहीं था कि वो
1: हमने तथा देवी पार्वती ने यह तथ्य गुप्त ही रखा था। हिरण्याक्ष से भी इसे गुप्त रखने का आदेश दिया था।
6: पिताजी, ये आपने मेरे साथ कैसा अन्याय कर डाला? आपकी मृत्यु के पश्चात ही मैं अपने वास्तविक पिता की शरण में चला गया होता। एक शिव पुत्र की ये दुर्दशा?
1: अंधक, तुमने ये बात सिद्ध कर दी है कि पुत्र भले ही परमेश्वर का ही क्यों ना हो, कुसंगति में रहने से मति भ्रष्ट हो सकता है और वो पिता से ही महादंड का भागी हो जाता है।
6: हे माते पार्वती, हे पिताजी, जन्म के समय मैं नेत्रहीन था। आपका स्वरूप मेरे मानस पटल पर अंकित नहीं हो पाया। अब जब वास्तविकता मेरे समक्ष उपस्थित है तो मेरा साष्टांग स्वीकार कीजिए।
1: हम एक पापी की ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते।
5: देवाधिदेव, ये असुरराज और कोई नहीं, आपका ही पुत्र है। आप इसका वध कैसे कर सकते हैं?
6: नहीं परमपिता ब्रह्मा, मेरे पूज्य पिताजी को भावनाओं से प्रभावित ना करें। मैं महाकामी, महापापी, पिता द्वारा दी गई इस मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता हूं। जीवन दाता को अपना दिया जीवन वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
7: कृपा सिंधु, आपके पुत्र अंधक को वासना के इस अंतहीन कूप में डुबोने वाले हम तीन मंत्री ही थे। हम भी आपके द्वारा मृत्यु पाकर शुद्ध होना चाहते हैं।
8: हाँ देवादि देव, हम पर भी कृपा कीजिए।
6: कामांध, ये शब्द कितना सटीक है। परम पिता के आशीर्वाद से दृष्टि पाने के उपरांत भी मैं कामांध हो काम के अंधकार में ही डोलता रहा। हर स्त्री किसी की माता, किसी की बहन, किसी की भार्या होती है, ये मैं भूल गया। मैंने स्त्री की मर्यादा का मर्दन किया है।
9: स्वामी, आपका पुत्र अपने पाप, अपने अपराध स्वीकार कर रहा है।
1: पार्वती, पाप या अपराध स्वीकार कर लेने से

0: वे समाप्त नहीं हो जाते, दंडनीय वे फिर भी रहते हैं।
1: स्वामी,
0: हम परमेश्वर हैं, दंड देने के अपने ही बनाए नियम हम अपने पुत्र के लिए बदल नहीं सकते। हमें अंधक के कुकृत्यों के लिए इसे मृत्यु दंड देना ही होगा। यदि हमने अपने ही पुत्र को उसके पापों के उपरांत क्षमा कर दिया तो हमारी क्या साख रह जाएगी? हमारे भक्तों की आस्था हम पर से उठ जाएगी। बोलो पुत्र अंधक
2: जी,
0: कैसी मृत्यु चाहते हो?
2: एक ऐसी मृत्यु पिताजी, जो मुझ जैसे कामियों के लिए उदाहरण बन जाए। मैंने सहस्रों स्त्रियों का शील हरण किया है, उनका शोषण किया है। आप मुझे अपने शूल से भेद कर ऊपर उठा दे, जब तक मेरे शरीर का एक एक बूंद पाप युक्त रक्त न बह जाए, मैं तिल तिल करके मरता रहूं, मरता रहूं, मरता रहूं।
0: तथास्तु पुत्र अंधक।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

उधर भरत जी अयोध्या से प्रभु राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं और राम जी से अयोध्या वापस चलने की प्रार्थना करते हैं।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर
1: राम नाम मणि दीप धरु जीह देह हरि द्वार तुलसी भीतर बाहरु जो चाहसी उजियार। श्रोताओ मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहे हूं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजुन मानि है जिन्ह कै विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं।

शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: श्रोताओं, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली अंतरिक्ष की इन सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगनगिरा सुनाई पड़ी।
1: जनी डर पहूं मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। हरि हूं सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय।
0: श्रोताओ, चलिए अयोध्या नगरी। रघुकुल मणि, धर्म धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, हृदय में सारंग धारण करने वाले, भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: श्रीनौ राजन,
1: अब मैं अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित्त ध्यान लीन होकर किसी स्थान पर बैठे रहे।
2: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
3: क्यों राजन?
2: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
1: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
2: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
3: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
2: लेकिन कौशल्या,
3: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
1: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोल ये राजन, प्रगति अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंगी ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी हो। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
0: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन। आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सादर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आज्ञा।
5: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पहुंचाने का आदेश दे।
2: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
5: हाँ, हाँ आर्य पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगू मांगू बरु भय नभ पानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
2: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि
5: जो फसुंद मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप परिलोचन, कृपा करो परतारित मोचन।
2: क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा, पद राजीव बरन नहीं जाहे, मुनि मन मधुप बस ही जिन माही।
3: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप।
2: वरदान? ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ उर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
5: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई।
2: तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव।
3: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब
5: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटही अनुग्रह मोरे।
3: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे। हाँ, बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए। राजन, अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
6: यही विध गर्भ सहित सब नारी
4: भई हृदय हर्षित सुख भारी, मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो आज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: ये सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारू भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु, ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की नेहु कहो, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावूं वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध मैं होब सनाता। देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
2: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हो विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हो भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनाई गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चरति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
3: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं। किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमती हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं, इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधि देई आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
2: आपका कहना ठीक है। राम, लक्ष्मण, आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो। पर इधर इधर मेरे निकट आओ, तुम्हें हृदय से तो लगा लूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो। आओ।
3: वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओ, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तेहि निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत योजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने

कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहि, कृपा करहु रघुवीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा में रखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुमार दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहां बखानी, गिरा अनैन नैन बिन बानी। अरे ये तो वही तो राजकुमार हैं, सुन हर्षी सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुत दे आली, सुनिजे मुनि संग आए काली, जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगु, अब सी देख अही देखन जोगु। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसे, जाने से सुन रही सभी।
2: इस फुलवारी के सुमान अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
3: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और यह सुना तुमने
2: क्या,
3: कंकन किनकिने नूपुर धुनि,
2: तात
3: मानह मदन दुंदुभि तीनि, मनसा विश्व विजय कहा कीनि।
2: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमित तजे दिगंचल।
3: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुरवाई।
2: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात,
3: जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
2: तात आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
3: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
2: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
3: लक्ष्मण मैं असमंजस में हूँ।
2: स्वाभाविक ही है तात।
3: वह बात नहीं, सुनो, रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु थरे ही नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जे ही सपने हु पर नारी न हेरी।
2: लेकिन भगवान विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
3: पर लक्ष्मण यह मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ? वह आदर्श जिनका लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियमनु डीठी।
2: इस लता गुल में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से भी चुने।
1: राजकुमारी तनिक इधर आओ, यहाँ से देखो उस लता की ओट में वो रहे दोनों श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखी क्या हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं? कौन और सच की बात है। देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं। कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु, जलत पटल बिल गाई। जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
4: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
1: राजकुमारी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि नहीं ले हूँ। सकुचो मत राजकुमारी, नयन उधर कर देखो ना, सन्मुख आमने सामने दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
4: सखियो, मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
5: क्या हुआ, क्या हुआ राजकुमारी?
1: चित्त तो ठीक है ना?
5: कैसी बात पूछती है तू?
4: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी,
5: क्षोभ क्यों?
4: सुमेर पिता पन मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
5: सखियो, राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना चाहिए।

मोर मनोरथ जानहु नीके, बसौ सदा उर्पुर सबहीके। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजि ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरु।

पर नाव मझधार में आने आधी उठता प्रचंड आधी उठता।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।